0: फैलाउ, जिम्मेवार नागरिक बनाउ,
1: आधिकारिक स्रोतबाट प्राप्त सूचनालाई मात्र विश्वास गरौ।
2: नेपाल सरकार विज्ञापन बोर्ड।

म्युजिक को प्रस्तुति में रहो युवन को इच्छा में एक गीत को यादिक नंबर 01300 3314 BRB नंबर 6048809 05 सुर विमल जागी मुना थापा रवि थापा जय विमल जागी।